0: अगर ऐसा बंदा जप भी करदा सी, प्रार्थना भी करदा सी, तो वासना वस होके करदा सी, धन मिले, रूप मिले, रंग मिले, पदार्थ मिले, उदी बंदगी दे च भी वासना सी, उदे जप तप दे च भी वासना सी। लेकिन सहजे सहजे जप तप ने मूलाधार तो उपर कीता, वासना दा जगत खत्म होया, और सहजे सहजे साधक साधना करदिया करदिया आग्या चक्र तक पहुंचया, और इसनों विन के अगे लंघया, निरंकार दी दुनिया आरंभ हुई, नवे दरवाजे खुले, कोई नवी सोच मिली, कोई नवी दुनिया दी झलक मिली। और जद कोई पुरुष इस दुनिया दी पहुंचे है, ते जद उसनू आख्या गया है हुण इस दुनिया दा कोई नक्शा रखो सामने, तो अक्सर इस तरह दे भगतां ने कह दिता है, कहत कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। हुण असी कुछ नहीं कह सकते, मूलाधार तो अगे लंघे सन, कुछ बयान कर दे रहे, सब दिष्टान मणिपुर तो अगे लंघे सन, भगत बोल दे रहे, अनाहत नाथ ते विशुद्ध तो अगे लंघे सन, भगत कुछ कह दे रहे। खामोशी दी दुनिया आरंभ हो गई, समाधि दी दुनिया शुरू हो गई। इत्थे आके गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज वर्णन करते ने, बिसम बिसम बिसमे ही भई है, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कार आए। गूंगा मुस्कुराते पैंदा है, उदा मुस्कुरावना दसदा है, परम रस आया, इसनों बयान नहीं कर सकता, व्याख्या नहीं कर सकता। इत्थे भगत खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, पर उसकी चुप्पी भी जो बोल जाती है, उसकी खामोशी भी जितना उपदेश कर जाती है, आम बंदियां दा बोलना भी उतना नहीं समझा सकता, आम बंदियां दे बोल भी इतने कम नहीं करते। इस तरह के पुरुष से अबोल अवस्था भी बड़ी कम कर जाती है, खामोशी भी जो है बड़ी कम कर जाती है। तो आगे चक्र नूं विन के जिहड़ी अगे की दुनिया है, इहदे बारे साहिब गुरु नानक देव जी महाराज भी फरमान करते हैं, जे हों जाना, जे मैं उस दुनिया नूं जान लिया, समझ लिया, जे हों जाना आखा नाहीं कहना कथन ना जाई, वो मेरी कथनी तो परे, वो मेरे कहने तो परे, वो ऐसी दुनिया जो मेरे शब्दां च नहीं आउंदी, मेरे बोलण दे च नहीं आउंदी, वो अबोल, वो खामोशी दी दुनिया, वो समाधि दी दुनिया, वो निर्विचार दी दुनिया, वो परम आनंद दी दुनिया, वो सचखंड दी दुनिया, यही बंदे दी मंजिल है। इत्थे पहुंच के ही बंदा पूरा होंदा है, मर के कोई पूरा नहीं आउंदा। ये गल वखरी, एक पंजाबी दी कहावत है, जद कोई बंदा मर जाए तो कहिंदे ने पूरा हो गया, पूरा हो गया। पूरा किस तरह होया? मर के ते कोई पूरा नहीं आउंदा, हाँ पूरन विच जुड़ के ही कोई पूरा हो सकता है। ते पूरन केवल परमात्मा है, आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर, उस पूरन विच लीन होके ही मनुख पूरा होंदा है। और पूरा केवल परमात्मा है, पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जांका नाव, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। इस अवस्था दे पहुंचे हुए मनुख नूं असीं कह सकदे हां पूरा हो गया है, मुकम्मल हो गया है। ए इंसान जमया अधूरा सी, जीविया अधूरा सी, भजन ने, सिमरन ने, साधना ने इसनों पूर्ण कर दिता है, मुकम्मल कर दिता है। इतनी ते विज्ञानक भी गल मनदे ने कि मनुखी बच्चा अधूरा जमदा है, मुंह विच दंद नहीं ने, पैरां दे चलण दी शक्ति नहीं है, हाथां विच पकड़ दी कोई ताकत नहीं है, जबान विच बोलन तक दी भी शक्ति नहीं है, बुद्धि विच सोचण तक दी भी शक्ति नहीं है, बिल्कुल अधूरा जमया है। सहजे सहजे कादर करीम परिपूर्ण परमात्मा दी साजी ये प्रकृति उहदे शरीर नूं पूरा कर दी है, और मुकम्मल हो जांदा है। 14-15 साल तक पैरां दे चलण दी शक्ति आ गई, हत्थां दे पकड़न दी शक्ति आ गई, जबान दे बोलण दी शक्ति आ गई, पूर्ण तौर ते बुद्धि पूर्ण तौर ते सोचण भी लग पई, और दंद मिल गए, वस्तु नूं चबाण दा भी पूरा बल मिल गया। लेकिन चेतना ते बंदे दी उस दिन पूर्ण होंदी है, शक्ति ते बंदे दी उस दिन पूर्ण होंदी है जद पूर्ण नाल जुड़दी है, ते पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ईश्वर है। कई दफा बंदा बाहरों पूरा हो जाता है, अंदरों अधूरा रह जाता है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: गुरबाणी शब्द कथा कीर्तन सुनने वास्ते सुनते रहो रेडियो 1550 AM। भाई साहब संत सिंह जी मस्कीन, भाई पिंदरपाल सिंह जी, भाई ठाकर सिंह जी अते होर पंथक गुणी ज्ञानियां तो कथावां ते गुरसाखियां ते गुरबाणी सुनने दे लई

तुम आसाम साइड निकल जा, कम से कम मेरी नजरां तो 1000 को दूर हो। 1000 को हुण 1500-1600 मील बन जांदा, इतना दूर हो जा, जहांगीर ने कहा। ये चला गया बेचारा, रस्ते च मधुकड़ी मंगदा होया गुजारा कीता इसने। कुछ साधुओं ने पहचान लिया ते महादानी रहीम है, हाथ फैलाया। उत्थे वो कहिंदा, या रहीम दर दर फिरे, मांग मधुखरी खाए, यारो यारी छोड़ दो, अब रहीम वो ना है, मैं हुण ओ नहीं। लैण वालिया ने मेरे नाल जिहड़ी यारी जोड़ी सी वो छोड़ देन, क्योंकि मैं देण जोगा नहीं हूं, मेरे कोल कुछ भी नहीं। लंबी चौड़ी उसकी ये दुहावली है, बई वगदा होया दरिया बंद हो गया, सुक गया, मेरे कोल पानी देण वास्ते नहीं है। साधु भी बड़े गैणी सन जिन्हां ने हाथ फैलाया सी, आखिया बई सरिता सुक जांदी है, लोकी खूह पटके भी पानी कढ लैंदे जमीन च। एक निक्की जिही अंगूठी पैनी हुई सी किधरे सोने दी, कहण लगे हां खूह दे इतना पानी है, कढ के दे दित्ती। इस तरह का पुरुष रहीम। हंकार जब शिखर ते पहुंचया तो बादशाहत इन्हां दे ते जिंदगी च गल्ला होंदी है, मरण तो बाद नहीं। अकबर दे अंदर ख्याल आया, पैगंबर अवतार ते संसार तो रुखसत हो जाण तां वी पूजे जांदे ने, और रविंद्र नाथ टैगोर ने तो इत्थे तक कहा कोई अवतारी पुरुष अपने समय च नहीं पूजिया जांदा, जदों होंदा है समझिया नहीं जांदा, जद रुखसत हो जांदा है लोगों नूं समझ मिलदी है उदों होंदा नहीं। कोई अवतारी पुरुष अपने समय च नहीं पूजिया गया, ठुकराया गया, जद ओ होंदा है समझ दे च नहीं आउंदा, जद लोकां दी समझ आउंदी है उदों ओ होंदा नहीं, फिर उस समझ दी पूजा चलदी है। टैगोर ने ठीक आखिया, अपने समय च पंजवें गुरु नानक तत्ती तवी दे ने, सता ते सत दा घोल है। हुण सता किवें प्राप्त होंदी है? चाणक ऋषि कहिंदे ने सता मिलदी है चार गुणा नाल, ते सत प्राप्त होंदा है दो गुणा नाल। सत दे दो गुण ने, सता दे चार गुण ने, इस वास्ते सता कहिंदे ने चौपाया जानवर है, मनुखता ते धर्म दे चाहुंदी है, वह दो पैरां ते चलदा है, उहदे दो पैर ने, गुरु नानक ने बयान कीते ने। सता दे चार कदम ने, चार गुणा नाल प्राप्त होंदी है, इनू चाणक बिदर और भरतरी बयान करदे ने। मैं सवेरे अर्ज कीती सी, इन्हां तिन्हां महापुरशां ने राजनीति दे बड़े वड्डे वड्डे ग्रंथ लिखे ने, चाणक नीति दर्पण, बिदर नीति दर्पण ते नीति शतक भरतरी दा। अज भारत दे हर वड्डे रेलवे स्टेशन ते रेलवे बुक स्टाल ते इन्हां दे ग्रंथ आम बिकदे ने। सफर दे जितने ये तीन ग्रंथ पढ़े जा रहे, मैं देख के हैरान होया, होर इतने नहीं। चाणक नीति दर्पण, बिदर नीति दर्पण ते नीति शतक भरतरी। चाणक सता प्राप्ति दे चार गुण दसदा है, शाम दाम दंड भेद। शाम अगले दी शरनी पै जाओ, पैरी पै जाओ, ते अगले दी पैरी पै के अगले दे पैर रोक दो, उनू चलन जोगा रहने ही ना दो। अगला सियाणा होवे ते ए सोचे जिहड़ा मेरा मेरे पैरी पै रहा है, मेरे पैरां नूं रोकण वास्ते पै रहा है, मैं चल ना सकां, सियाणा होवे, और वो इस तरह काबू ना होए तो फिर सता दूसरा गुण वरती है कि दाम कुछ दे के खरीद लो। हर चीज जगत दे बिकाऊ है, मनुखता भी बिकाऊ है, इंसानियत भी बिकाऊ है। बाजार दे स्त्री की असमत बिकती है सारी दुनिया च, पुरुष का ईमान बिकता है, धर्म बिकता है। मिर्जा गालिब ने किसी वक्त कहा सी, हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा

नहीं भेष जो तू कर चुके हैं भोगण ली तैयार हो जा, मेरे को इसका कोई इलाज नहीं। धन गुरु नानक देव जी का बोल थोड़े सामने रखा, इंज कह लो इस युग दे अवतारी पुरुष का फैसला, भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किच हाथ है, सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप, सब हर के वस है लाग सके ना बिन हर के लाया। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने मत कोई जानो अवर किसी के किच हाथ है, किसी के हाथ च कुछ भी नहीं है, जो तू कर्म किते ने उन्हां दा ही रब्बी फैसला तेरी चोली च पे है और कुछ भी नहीं। कोई किसी नूं सजा भी नहीं दे सकदा, हां दिखाई देंदा है उन्हें चोट पहुंचाई है, उन्हें चोट पहुंचाई है। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं। अक्सर ही ऐसा होता है, एक संत नो समझ आ जाती है। मैं पढ़ रहा सी एक दिन इतिहास, महात्मा बुद्ध चल रहे सन ते पत्थर नाल ठोकर खा के गिर गए, उठदे सार फिर पत्थर नो नमस्कार पे कर दें, नाल उन्हां दा चचेरा बिरा आनंद सी, कहन लगे इस पत्थर नो ये चुक के परे सुटिए। उन्होंने वाकई चुक के एक पासे भी कर दिता, ये कोई मत्था टेकन दे लायक है, थोड़ा पैर जख्मी कर दिता है। महात्मा बुद्ध कहंदे आनंद एक कर्जा सी निबड़ गया, निबड़ गया, तू हुण होर कर्जा ना चढ़ा मेरे ते, एक कर्जा सी मेरा निबड़ गया, ये जख्म लगे निबड़ गया, नहीं तो छोटी जी चोट भी शायद कि अगले जन्म का कारण ना बनती, निबड़ गया। मैं इस वास्ते धन्यवाद किया, पत्थर इस जिंदगी च मिल गया चंगा है, एक बार ले गया। इस तरह के सोचने वाले भी हैं। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने हुक्म लिख दुख सुख पाईए, तू लिखिया होया की है, करमी करमी होए विचार, सच्चा आव सच्चा दरबार। चूंकि कर्मानुसार दुख ते सुख है ते बनाया परमात्मा दा नियम है, इस वास्ते भगत कहंदे सब कुछ तेरे हाथ च, नियम ते तेरा बनाया, कोई साडा थोड़ी बनाया। भगतां दी गल समझ दे च नहीं आई, जद भगत कहंदे सब कुछ तेरे हाथ च है तो तेरे हाथ तो मुराद ये नियम तू बनाया है, असी नहीं बनाया, साडा कुछ भी नहीं है, ये नियम तेरा बनाया। इस वास्ते सब कुछ तो है, सब कुछ तो है। नानक हुक्मे जे बुझे ता हां मैं कहे न कोई, जिसनों इस हुक्म दी समझ आ जाए कि संसार एक मर्यादा है और एक लीला है, एक तमाशा है, लेकिन लीला ते मर्यादा दे कर्म दी जिम्मेवारी सिर्फ मनुख दी है, ए भी उसकी लीला ए भी उसकी मर्यादा, पशु दी जिम्मेवारी नहीं है। अगर पंछी दरख्तां तो फल खा जांदे ने ते दरख्त किसी बागवान दे ने, चोरी दा इल्जाम उन्हें ते नहीं आयद हो सकता, प्रकृति वालों इस तरह की उन्होंने खुल है। ये नहीं कह सकते ये चोरी की थी, दरख्त किसने लाया तो खांदे तुसी, इत्थे घोंसला बना ले दरख्त किसे दा तो तुसी अपना आलना बना ले। ये अचेत दुनिया है, ये ओ ने जो मां दी गोद दा बच्चा, इसते कोई जिम्मेवारी नहीं, ये ते मां दे पालन नाल पल रहा है, ये ते विचारा खुद पल भी नहीं सकता, प्रकृति पालना पई करती, जिम्मेवारी मनुख दी है, मनुख परोड़ होया है, सियाणा होया है, और एक परमात्मा दा बनाया होया नियम, तू दुखी है तेरे कर्म, तू सुखी है तेरे कर्म, क्योंकि दुख सुख
फल है कर्म बीज।

और किसी का बोया या बीज कोई दूसरा नहीं खा सकता। ऐसा होता है प्यो ने बीजिया जमीन देच पुत्र फसल वढ़ रहा है। अंब का बूटा प्यो ने लाया सी अंब खा रहे ने पोतरे। पर कर्मां दा बीज जो असी बोंदे अपने अंतिशकरण दी धरती देचे ते आप बीज आपे ही खाए दूसरा नहीं। खुद बीजदे हैं खुद खांदे हैं। मेरे दुख नूं देख के मेरी मां अफसोस ते कर सकदी मेरा दुख वंड नहीं सकदी। मेरे दुख नूं देख के मेरा भरा अफसोस ते कर सकदा है वंड नहीं सकदा। मेरे दुख नूं देख के हो सकदा है कोई मित्र माड़ा जिहा दुखी हो जाए पर मेरे दुख नूं वंड नहीं सकदा। आप बीज आपे ही खाए। मैं खुद बीज है मैं खुद खावांगा। रब्बी नियम ईश्वरी नियम परमात्मा का नियम। इस दूसरी पौड़ी विच सतगुरु कहिंदे ने सब कुछ हुक्म देच है। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय। हुक्म विच की कुछ हो रहा है सारा ब्रह्मंड हुक्म दे चल रहा है। ऐ मनुख तू भी उसके हुक्म दे मुताबिक होया है। तेरे दुख सुख का फैसला कर्मा अनुसार है। यह भी उसका हुक्म यह भी उसकी बनाई मर्यादा इस दे तेरा कुछ भी नहीं है। कर्मा की सही तू चोण कर सके उसने तेनों एक चिराग दे दिता है दीवा दे दिता है अकल का बुद्धि का। ते फिर भी अपनी अकल नाल समझ नहीं आई तो फिर उसने अवतार भी भेज देते ने बड़े बड़े ग्रंथकार भी भेज देते ने बड़े बड़े व्याख्याकार भी भेज देते ने लेखक दार्शनिक फिलोसफर चिंतक भी भेज देते ने ऋषि मुनि भी भेज देते ने पैगंबर भी भेज देते ने और वो ऐलानिया कह रहे ने जिस कर्म तो तू किसे नु चोट पहुंचा रहे हैं तेनू चोट पहुंचेगी। जिस कर्म तो तू किसे नु हानि पहुंचा रहे हैं तेनू हानि पहुंचेगी। जिस कर्म तो तू किसे दी बेइज्जती कर रहे हैं तेरी बेइज्जती होगी। जिस कर्म तो तू किसे दी पग ला छड़ी है तेरी ले जाएगी। नियम ईश्वरी नियम इस समझाने वाले भी गाहे बगाहे ओ अकाल पुरख परमात्मा भेजदा रहा है। एक अकल दा दीवा दिता एक अवतार दिते एक इतने ग्रंथ दिते ग्रंथकार दिते चारों पासे मनुख नूं समझाण ते समझण दे वसीले जो है मुहैया कराए। फिर भी जद कोई मनुख नहीं समझदा तो गुरबाणी कह देंदी है मनुख होके भी पशुआं दी तरह जी रहा है। करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। तीसरी पौड़ी रिच मैं कल आरंभ ते कीती सी पर अज दूसरी दे आले दुआले मेरा दिमाग घूमदा रहा है। तीसरी पौड़ी मैं पढ़ के थोड़े सामने रख दें ते कल अर्थ ते विचार रखांगे। गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने नहीं सान। जे किसे कुल समझ दा तान है नानक हुक्मे जे बुझे। जे कोई बुझ गया समझ गया जान गया ते जानना एक शक्ति है बुझना एक शक्ति है एक कला है। किसी वस्तु नूं गहराई विच देखना ते जानना ए भी एक शक्ति है। महाराज कहिंदे ने होवे किसे तान अगर किसे कुल समझण दा तान है ते समझण दे नाल नाल कथन करन दा भी ध्यान है बयान भी कर सकदा है गल उस नूं समझ भी आ गई है ते गल समझा भी सकदा है। मैं कल भी अर्ज कीती सी बहुत सारे ने ऐसे दुनिया च समझ जांदे ने रब्बी नियम नूं समझ जांदे ने समझा नहीं सकदे। और बहुत सारे ऐसे भी ने जो समझांदे ते पए हुंदे ने लेकिन खुद नहीं समझे उन्होंने ये भी मैं अर्ज करा खुद नहीं जाने। जर्रे तो लैके सूरज तक कीड़ी तो लैके हाथी तक ओही विराजमान। वो कीड़ी दे च भी है हाथी दे च भी है वो जर्रे दे च भी है वो सूरज दे च भी है। अस्थि कीटी त्रिलो आदम एक अखंडत बसे अनादम। वो ऐसा है पूरे आया
अपने कृत विच हो रहा है। उहदे सुभाव विच भय नहीं है, वैर नहीं है। मनुख की पहचान एक ते रूप तो आती है, एक उसके सुभाव तो आती है। हो सकता है रूप बड़ा सुंदर होवे, सुभाव बड़ा भैड़ा होवे। हो सकता है सुभाव बड़ा चंगा होवे, रूप बड़ा भैड़ा होवे, कुरूप होवे, चंगा ना लगे। अष्टावक्र, लत्तां भी टेढ़ियां, बाहां भी टेढ़ियां, कमर भी टेढ़ी, गर्दन भी, अठ थां तो शरीर विच बल करो। उस जमाने विच दुनिया का सब तो कुरूप मनुख अष्टावक्र, पर उस जमाने का मन करके सुभाव करके सब तो सुंदर मनुख अष्टावक्र। तन करके बदसूरत है, मन करके खूबसूरत है, सुभाव चंगा है। तो एक बंदे की पहचान आती है उसके रूप तो, दूजी पहचान आती है उसके सुभाव तो। परमात्मा का स्वरूप वो एक है, उस तो उत्पत्ति पालना नाश हो रही है, जो कुछ हो रहा है उसे तो हो रहा है। वो सदीवी है, कायम दायम है, करता है, अपने कृत विच पूरिया होया है। उहदे सुभाव विच भय नहीं है, वैर नहीं है, निर्वैर है, निर्भय है। उहदे अंदर भय नहीं है, वैर नहीं है। जिथे उहदे सुभाव विच भय नहीं है, वैर नहीं है, उत्थे उसके सुभाव विच उहदी होंद विच समा भी नहीं है, वक्त भी नहीं है। इसनों मैं खोला तो मंगलाचरण मूल मंत्र दे ची समा लग जाएगा, उदे समा भी नहीं है। परमात्मा समा नहीं है, अकाल, काल समय नू कहिंदे, वक्त नू कहिंदे। एक निक्का जिहा नुक्ता, तन नू भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिदा है, जगह चाहिदी है। जगह ही नहीं है, मनुख कित्थे बैठेगा, जगह ही नहीं है, कित्थे काम करेगा, जगह ही नहीं है, किवें भजेगा दौड़ेगा। तन भजदा है, दौड़दा है, उठदा है, बैठदा है, काम करदा है स्थान विच, मन भजदा है समय विच, इहनूं स्थान दी लोड़ नहीं है। इत्थे बैठिया बैठिया भी मन दौड़ रहा है। मन समय विच दौड़दा है, किहड़े समय विच दौड़दा है, गुजरे हुए समय दीआं यादां च चला जांदा है, आने वाले समय की चिंता चला जाता है। मनुख कभी चिंता च बैठा होंदा, कभी यादां विच डुबिया बैठा। गुजरे समय दीआं यादां दा सिर ते बोझ, आने वाले समय की चिंता का बोझ, किसी वक्त फिर खुलासा। परमात्मा उस समय विच उत्थे समा ही नहीं है, समय परमात्मा करके है, समय करके परमात्मा नहीं, असी समय करके हाँ। सानू समय ने बनाया है, सिर्फ समय ने बनाया ही नहीं, काल ने बनाया नहीं, सानू काल खा भी जाएगा, समा खा भी जाएगा। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए शुजु अवतरा, काल पाए कर विसन प्रगासा, सकल काल का किया तुम्हार सारा आकार, ते संसार काल दा तमाशा है, समय दा तमाशा है। जो समय च बने है समा मिटा देगा, जो समय विच आया है समा उसनों रुखसत कर देगा, जो समय विच बनया है समा उसनों मिटा देगा। उस समय करके नहीं है परमात्मा, परमात्मा करके समय है। इस वास्ते अकाल, कोई ना समझे कल्पना मात्र है, मूर्तिमान है, मूर्त है। कि मूर्त तो मुराद फिर एकदम बन जाए, किसी ने घड़िया होगा, किसी तो जमया होगा। एकदम सतगुरु कहते हैं अजौ नहीं, जमया नहीं, अजन्म है, अमरण है, जमया नहीं है। तो फिर कैसे है सैभं? संस्कृत का शब्द है स्वयं भू, अपने आप तो प्रभू होया, अपने आप तो प्रगट होया, आप ही ने आप साजे हो, आप ही ने रचे हो ना। सैभं शंभु स्वयं भू, पंजाबी रूप सैभं, अपने आप तो आप ही होया है। फिर सारा ज्ञान उसे तो आ रहा है, वह जड़ा एक है, वह गुरु है।
ज्ञान गुरु है, ज्ञान सारा परमात्मा द्वारे है। ज्ञान ही ते गुरु है, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम बे बहुत लगाओ। सब कुछ जिथे परमात्मा तो आया है, ज्ञान भी उसे तो आया है। कोई गैर गंभीर कविता किसी कवि दी नहीं आती, परमात्मा दी आती है। कवि दी पकड़ दी आ गई, उदे पांडे समा गई। कोई ज्ञान मनुख का नहीं आता, सब परमात्मा का। जब कोई कह देता है ज्ञान मेरा है, उसे ज्ञान की सीमा बन जाती है। जब कोई कहता है ज्ञान परमात्मा तो आया, वही असीम हो जाता है। गुरु है, प्रसाद दयालु है, बख्शिंद है, रहीम है, रहमान है, बख्शिंद है, करुणाकर है, दयालु है। इतने तक मूल मंत्र मुख्तसर, ते हुण आप शब्द सरवण करो। हाँ जी,

0: इस पंक्ति विच अरजोई है, बेनती है, सारा शब्द बेनती है, अरदास है। कीती हुई साधना, कीता होया जप तप, वही सफल है जो मनुख नू अरदास तक लै जाए, बेनती तक लै जाए। कुछ धर्म ते ऐसे ने जैसे ईसाई, भी चर्च क्यों जा रहे हो? प्रेयर करन जा रहे हैं, अरदास करन जा रहे, सिर्फ अरदास करन जा रहे हैं। साढ़े च ऐसा नहीं, कीर्तन सुनन जा रहे हैं, कथा सुनन जा रहे हैं, गुरु दे दर्शन करन लई जा रहे हैं, सत्संगियां दे दर्शन करन जा रहे हैं, सेवा करन लई जा रहे हैं, पुन करन लई जा रहे हैं। ये सब कुछ कीता होया, पुन सुनिया होया, कीर्तन सुनी हुई कथा, इसका फल की है? अंदरों अरदास दा निकलना। वो अरदास फिर व्यर्थ नहीं जाती, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। ये कदों निकलती है? जप कर करके निकलती है, कीर्तन सुन सुन के निकलती है, कथा सुन सुन के निकलती है, पाठ कर करके निकलती है। उंज नहीं निकलेगी, उंज बथेरी अरदासा आउंदियां ते मनुख करदा। कोई रस्मी अरदास, दीवान दी अरदास, दिल दी गहराई चो अरदास निकलती है, जप कर करके, तप कर करके, साधना कर करके, कीर्तन सुन सुन के, कथा सुन सुन के, बाणी पढ़ पढ़ के, पाठ कर करके, उंज अरदास नहीं निकलती दिल दी गहराई च। और जदों ये अरदास निकलती है फिर व्यर्थ भी नहीं जाती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल दी गहराई चो जड़ी अरदास निकली है खुदा तक पहुंचेगी। इसे नु गुरबाणी कहती है, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। सारे शब्द विच एक अरदास है, यक अर्ज असी अरदास कहने हैं, परशियन दे कहने ने अरजोई करने, अर्ज करने, अर्ज करने, अरजोई है। संस्कृत दे हिंदी च कहने ने प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। फारसी च कहने ने अर्ज करनी है, अरजोई करनी है। गुरु नानक ने एक शब्द नो जन्म देता है, अरदास करने है। ते अरदास दे जो मैं अर्थ समझे ने ते पढ़े ने, अर्जे दास्त हाथ जोड़ के अरजोई करने, दस्त बस्ता हथानु जोड़ के अरजोई करने, बेनती करने, प्रार्थना करने। सतगुर कहते ने यक अर्ज, एक मेरी अरजोई, एक मेरी प्रार्थना, एक मेरी अरदास। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, गोश कन्ना नु कहंदे ने, ऐ करतार जे तू कन ला के सुने। मनुख जिथे आउंदा है उत्थे ही उसदे कन आउंदे ने। घर विच बैठीए मां ते सानू कुछ सुनाना चाहे नहीं सुन सकदे, क्योंकि असी जिथे बैठे कन उत्थे ही ने। जिथों सानू सुनाया जा रहा उत्थे साडे कन कोई नहीं। मनुख जिथे आउंदा है उसदियां इंद्रियां उत्थे ही आउंदियां, उसदी जबान उत्थे ही आउंदी है, उसदियां अखां उत्थे ही आउंदियां। जिथे है उत्थे ते वेख सकदा है, जिथे नहीं है नहीं वेख सकदा, जिथे है सुन सकदा है, जिथे नहीं है नहीं सुन सकदा। मनुख जिथे है उहदे ज्ञान ते जद व्यापक है ते उहदा सुनना भी व्यापक है। किसे थां भी अरजोई कीती जा सकती है, किसे थां। परमात्मा व्यापक है, उदा वेखना भी व्यापक है। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हे प्रभु तू कन कर भाव सुन, हे करतार हे सृष्टि दे रचनहारे। एक अरजोई एक बेनती है। फिर अगलियां पंक्तियां च जिस दे अगों बेनती कर रहे ने उसकी महिमा बयान कर देना। हां जी,
1: हका कबीर करीम को ऐब फरद गवार।
0: परशियन देच अरबी देच सच नू हक कहंदे ने, हक। जैसे भाई साहब भाई नंदलाल कहंदे ने, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। ऐ कलगीधर तुसी ते हक हो, भाव सच हो, हकीकत सच्चाई हक सच परशिंदे च अरबी दे च सच लई जेड़ा शब्द है वह है हक। सतगुरु कहिंदे ने हक्का ऐ सच्चे, हक्का ऐ सच्चे, हक्का कबीर। कबीर कहिंदे ने बजुर्ग नूं, वड्डे नूं, पुराने नूं। पुरानी चीज नूं कबीर कह देंदे ने, बुजुर्ग बुढ़े मनुख नूं भी कबीर कह देंदे ने, संत फकीर नूं भी कबीर कह देंदे ने, और परमात्मा नूं भी कबीर कहिंदे ने। वड्डा बुजुर्ग है, कदीमी है। ये कबीर लफ्ज फारसी का भी है और अरबी का भी है। अरबी च भी कबीर कहिंदे ने, परशिंदे च भी कबीर कहिंदे ने वड्डे नूं। हे हक्का, हे सच दे स्वरूप, हे सच्चे, हे सब तो वड्डे हक्का कबीर, करीम तो बख्शिंदे तो, तेरे स्वभाव विच दया ही दया है, तेरे स्वभाव विच रहमत ही रहमत है, बख्शिश ही बख्शिश है। हक्का कबीर करीम तो बेऐद परवरदिगार, ऐ पालन हारे तू निर्विकार है, तेरे च कोई ऐब नहीं, तू निर्विकार है, निर्मल है, अति निर्मल है, अति निर्मल है, निर्विकार है, और सृष्टि दा करणहार है, तू हक है, तू कबीर है। इस तरह मेरे पातशाह उस प्रभु की अरदास विच जो है महिमा गायन कर रहे हैं। हां जी,
1: दुनिया मुकामे पानी तहकीक दिल तमी।
0: हे प्रभु, मैं ते अपने दिल नो समझाना, ये जगत फानी है, नासवंत है, तू हक्का है, जगत ते झूठ है, छाया है, तू कबीर है, ये सब कुछ ते तुच्छ है, बेमैने है। दुनिया मुकामे फानी, ये जो टिके होया जगत दिसदा पे है ते मिट जाएगा, ये ते फानी है, नासवंत है। ऐ मेरे दिल तू ऐसा जान, हे प्रभु, हे करीम, हे हक्का, मैं अपने दिल नो ऐसा समझा रहा, ऐसा कह रहा, सब कुछ नासमंत है। किसी वक्त खुलासा करांगा, धर्म दा प्रभु दा सारा ज्ञान मौत दे ज्ञान तो आरंभ होंदा है। लोभ वाशना हंकार सारा जीवन दी लालसा तो शुरू होंदा है। जितनी जीवन दी लालसा उतना हंकारी, जितनी जीवन दी लालसा उतना लोभी, जितनी जीवन दी लालसा उतना वाशना दे ग्रसिया होया, जितना मौत दा ज्ञान उतना बैरागी, जितना मौत दा ज्ञान उतना सतवादी, जितना मौत दा ज्ञान उतना आत्मदर्शी। धर्म दा ज्ञान शुरू होंदा है मौत दे ज्ञान तो। तो सतगुरु कहिंदे ने मैं दिल नूं समझा रहा, सब नासवंत है, सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐ मेरे दिल ये सच करके जान, ये मैं चंगी तरह तहकीकात करके वेख लिया, छान बीन करके देख लिया, सब कुछ नासवंत है, सब कुछ नासवंत है। ऐ मेरे दिल सच्चा जान, केवल उसनों वड्डा जान, केवल उस परिपूर्ण परमात्मा नूं। हां जी,

उडुड़ा वाचा टेपाए देखे लोक शेकर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पिछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो निरंकार सचना।

निरंकार है न लय नरक न जाइए जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना कर पुनो निज सुधाइए जे जरवाना पर हरे जर...

चोरा यारा ते कुड़िया रखा रबा बेकार एक होंदा खाए चले था ओ दिना बिकाई कार जल था जिया पुरिया लोहाया कार आया कार।

पौड़ी बिन सतगुरु के ना पायो, बिन सतगुरु के ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेब की दिशन तो खी जिन्हें सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

दीपालोहा मंडला खंडा बिरपंडहा अंडू जेरी जुट पुजा खानी सेत जा सोमत जाने नान का सारा मेरा जनता नाग जंतु पाए कैसा माले सबनहा जिन करते करना किया चिंता भी करनी ता सो करता।

0: महला पहला पर गड्डी लदी है पर भरिए साथ पर बेड़ी पाइए पर गड्डिए खात पढ़िए है जेते वर्ष बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल और हो में जखना चा
1: महला पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

0: काल पूर्व वर्त्या कल कार्त बेताल बियो बीज पतले के अब क्यों उपवेदार जेक होय तो कबे रुती हुरत होए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पैवज खुमचड़ा ये सरु पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोएदा कोए
1: महला पहला लब पाप धोए राजा महता कूड़ हुआ शिकदार

तू दारू सुख पिया जा सुख काम ना होई, तू करता करना मैं ना ही जाह करी ना होई, बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ, जात में जो जो

0: तुवा पूरा तपे का सत गिर तुवा हो का जुगरा थगन का कूड़ा गैर तुवा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में ऐसा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया।
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाओ भगत करनी

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आख पाए हुए प्राण सटिए फिर पाया हो रे नानक तग न टुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत डर गए अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके चुक पवे निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न की बे तग आया पे बते।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वाह लगी, ना जमा दी तत्ती वाह लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तू दया के लकरो, सच्चे सबदान सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी शिव सच्ची सलाह, सच्ची तेरी गुरु सच्चे पाशाह, नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सुकाच निकाच।
1: मोहल्ला पहला वड्डी वडाई जा वड्डा नाओ, वड्डी वडाई जा सच न्याओ, वड्डी वडाई जा नहिं चलथाओ, वड्डी वडाई जाने आलाओ, वड्डी वडाई पूजा सब भाओ, वड्डी वडाई जा पुछना दात, वड्डी वडाई जा आपे आप, नानक कार ना कथनी जाए, कीता करना सर्ब रजाए।
0: भला दूजा है जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, एक ना हुकुम।

श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद बेस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फेरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साथ लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद विजोग विस्माद भोग विस्माद भोग विस्माद शिव तुस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद।

गहने पौन पानी पैसन तचा सुरजवतार सगली धरती मार तन वर्तन सरजन जा नानक मूसे ज्ञान बिहूनी खाए गया जमकाल महला पेला वन चेले नचन गोरे पैर हलान फेरन सिर उड़ उड़ रावा चाटे पाए देखे लोक से कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पिछाड़े धरती नार गावन गोपियां गावन कान

पौड़े बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हम हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता।

पौड़ी सेव की दिशन तो खी जिन्हें सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया।

0: काल पूर्व वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज बतले के अब क्यों बेदाल जेक हो तो कबे रुति हुरत होए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए फैबज खुमचड़ा ये सरु पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए दा कोए
1: महला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार।

0: का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजर संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वा वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने है छड़ बह है करबार सबको पूरा आपे होवे घट न कोई आखे पत प्रवण पिछे पाइये ता नानक तोलिया जापे
1: जिसमान का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारियां करता करे सोए अगे जात ना जोर है।

0: तुम्हा पुरा तपे का सत गिर तुभा हो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर तुभा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर समी सच में ऐसा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमलकिया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप भक्त कर नीच।

सुचे अगे रखियो कोई ना पिटो जाए सुचा है के जे ब्या लगा पंच लोक कोहती जाए सटिया किसे लगा दोक आन देवता पानी देवता बैसन तुर देवता लून पंजवा पाया किरत का होया पाक पवित पापी सतन कटिया थुका पियां तेत जित मुग नाम ना उचरे

कृपा श्री भगवान भजे बिन अंत कंत के धम सुधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नियमा अनेक बसेखा भेद पुराणक दे बुकुरान जमीन जमान सुबान के भेखा पवन आहार जति जातार सबे सो बिचारा जार को देखा श्री भगवान भजे बिन भूप दे करती बिन एक न लेखा।

को राज करेंगे। कोटि स्नान जातिक दाना अनेक स्वयंवर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपति अंत फसे जम फास परेंगे।

पुरी चतुर्दशकंताय कालपाय ब्रह्मा अवतराय कालपाय शिवजू अवतराय कालपाय कर विष्णु प्रकाशाय सकल काल का किया तमाशाय।

कूड़े लागे तिन्नी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सत गुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाई मनसा सत समाणी जन

जो प्रभु को मिल भोज है, राज करेगा खालसा। क्वार हुए सब मिलेंगे, वाहे गुरु नाम जहा जहा।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
2: वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे

कर पांडे जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चर चर पवे दियार नानक जिन करते करण किया सो जा।

0: स्वस्थ तिस तिस जीवन भग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तक महला पहला
1: लख नेकियां चंगाइयां लख मना प्रवान लख तप प्रतीर्था सहयोग विवाह लख सूरतिम संग्राम प्रणम है छोटे पाल लख सुरति लख ज्ञान त्यान पढ़िए पाठ प्राण जिन कर दे करना किया लिखिया आपने जान नानक मती मिथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा सहब।

सतगुरु भेटे सो सुख पाए, सतगुरु भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन बसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते नहीं केवल, हम मैं शब्द जलाए पौड़ी। सच साहो हमारा तू तनी

योग शब्दं ध्यान शब्दं वेद शब्दं ब्रह्म खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं पराकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पियो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा ए कृष्णं।

परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों आप जी ने पट कीरत साहिब जी की रचना तो उच्चारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भक्ति कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती कोई प्रेमा भक्ति दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआं उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिती। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। किन्हें इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडण वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नू पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो कृपालता फिर

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जान्यो, धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती की। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं की। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। तन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिमें असी बाणी विचों तन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन किया। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थकां सिर जुलां, जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हथ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने, इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बल दियां ने। तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थकां, जे पैरां नाल चलदियां होया थक जावां, सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरा ने तन दे अंगा ने की विगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हैं कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हैं, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख,
परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई बारी अर्ज करना हुंना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगाशी बिगसै सहज सुभाई। हुण कमल दा फुल जिहड़ा ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा ओ आसमान विच है, दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी ओहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ओह किहड़ी ताकत है, ओह किहड़ी मिकनाती शक्ति है कि जिहड़ी इस कमल दे फुल नूं चिक्कड़ विच खिड़े होए नूं पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक, कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने ए ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दित्ती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने, चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनां दी दूरी है। ना तो चकोर नूं किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जां किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उन्हूं सिखाया कि आओ देख रात नूं चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नूं एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दित्ती, चकोर नूं किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच उह पैदा होए चंद्रमा नूं देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालांकि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नूं देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा है आसमान ते एक टिक उहनूं नजर टिका के देख दीए, चंद्रमा जदों ये अपनी थां सारी रात बदलता है अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उहने ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नूं अपने जिस्म नूं घुमाना है, उहदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नूं उहने सवेर तक लहिंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नूं सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नूं ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़दी है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उहनूं अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल तां केवल अपनी गर्दन नूं झुका के अपनी पिठ ते ला लैंदी है ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है, चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दित्ती, चकोर नूं किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर लई कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नूं जे किते मनुख समझे उसे खिच नूं ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही पर ओदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचों अर्ज कर रहे हैं, भाई साहब ने पहला बचन किया, चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, प्रेम है ते ओ एक टिक चंद्रमा नूं देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लाणी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टेको के चंद्रमा नूं देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले,
चकबी सूरज खेत है मिल खून सुखाले। हुण इत्थे भावें शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकबी दा सूरज नाल नेक है, दरअसल उहदा सूरज नाल ने नहीं, चकबी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानण विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण इक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा उहदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी उहदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी उहदी सोचण दी शक्ति नहीं, मनुख जितना वह कोई कार विखार भी नहीं कर सकता, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं, सकून नहीं, जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओह केड़ी खिच है जिहड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की, एक टेक होके ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की है। कमल विच खिच है सूरज नू देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले, निहो कवल जल जानी है खिड़ मूह बखाले। खुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे, कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है, छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देरे ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जिहड़ी दिसदी नहीं ओह खिच पानी विचों उहनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन कीता, कहन लगे मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उहनूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। ओह असमान दे उत्ते ओह धरती दे उत्ते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपिया कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदों खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा है भादों दा, उदों पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा है, ओह वी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। उहदे विच वी इक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणू मां ते पुत्तर दी वी इक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर वी इक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है प्यारिया, कि पानी जेड़ा वह सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमकदे हुए बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए विलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है पर मौत प्यार नूं विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए, सच जाणो ए प्रीत मरन तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। ए कैसी प्रीत है, भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदिआं बहुत सोहणी ए पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले,
चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले न्यू कवल जन जानिया खिड़ मूह बखाले मोर बाबी ये बोल दे वेख बदल काले नार पतार प्यार है मां पुत संभाले पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है पीर मरीदा पिर हड़ी ओ निब है नाले के मरीद दी ते पीर दी जड़ी प्रीत है ओ तोड़ निबण वाली ओ रस्ते विच टुटन वाली नहीं। आप तवज्जो देना गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदो असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्हां ने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नू मुखातब करके प्यारे नू प्यार करन दे कुछ जुगतां सानू दसी। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हां कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने रहाओ दे बचन ने मन रे क्यों छूटै बिन प्यार हे मेरे मना कि परमात्मा नू प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा कि तू बंधना तो मुक्त हो सकना परमात्मा नू प्रेम करन तो बिना मन रे क्यों छूटै बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारिया थावां ते रविया है ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नू फिर समझिए मन रे क्यों छूटै बिन प्यार प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नू कदी तू खुश नहीं कर सकदा। गुरु तो बिना तेनू प्रेम करन दी जुगत नहीं आउंदी। वैसे तो जे इंसान नू समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार ने ये जितने भी शब्द असी वरतने जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा ली प्रीत नहीं प्यार नहीं ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने प्रा प्यार तो प्रीत तो बिना जेड़े मनुखां दे तन ने कहिंदे ने मानो ओ तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुर्दे सड़ के किते मिट्टी दा ढेर हो जा। ओ तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्यार है मरे कोई शरीर विच कोई हरकत नहीं ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं सच जाणियो ओ खाए भी पीए भी बोले भी पर गुरु दी नजर विच एक ओ जींदा लाश है ओ मुर्दा है जे उस अंदर प्रीत नहीं तां प्यार तो बिना छुट नहीं सकदा। हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत ए सारे गुण होण दे बावजूद भी मृतक कई है नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। बाबा नानक जी कह रहे ने मन रे क्यों छूटै बिन प्यार मृतक कई है नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। जे उस परमात्मा दी प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं। ओ मुर्दे नू जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने उन्होंने जोबन दी गल कीती हुण जवानी अपने आप विच परमात्मा दी एक बड़ी वड्डी दात है ते जे किसे बंदे दे कोल जोबन भी है पर जोबन होण दे बावजूद उस दे अंदर प्यारे दी प्रीत नहीं ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद साहब कहिंदे ने प्रीत तो बिना मनुख दा तन शमशान भूमि है प्रीत तो बिना ता जवानी सड़ के राख हो जाए उदा करना की है। बाबा जी ने अमृत बचन कह जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए कहने जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा सानू कोई डर नहीं। डर तो उदो है जदो वक्त समा जा जोबन जा जीवन परमात्मा दे प्रेम तो बिना चला जाए सिमरन तो बिना चला जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनिया गजलां विच पहला शेर ही ये क्या है पहली गजल दा कहन लगे खवाए बंदगी आ वुर्द दर वजूद मरा ऐ मिनसान तू वजूद विच तां आया है कि परमात्मा दी इबादत करें परमात्मा दी बंदगी करें। जे परमात्मा दी बंदगी नहीं सी करनी ते फिर इस वजूद विच इस तन विच आउण दा लाभ की। कहन लगे फिर एवें आसमान दे थले अपनी जिंदगी दे दिन प्या कटना
बंदगी करके ही जिंदगी है, जे बंदगी नहीं ते सच जानी फिर जिंदगी नहीं। हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा, वगर ने जो के चुनी आमदन नाबूद मरा। जे उस परमात्मा दी इबादत नहीं ते या अल्लाह या रब मेनू इस शरीर विच रहन दा कोई शौक नहीं, क्योंकि तेरी बंदगी दे शौक करके ही मैं जी रहा हां। प्यारियो तवज्जो दिया जी, बाबा नानक जी ने प्रेमा भगती की ते मैं अर्ज करना पिया बाबा जी दी बाणी विचो पुछ लीए कैसी प्रेमा भगती उन्हां कीती। उन्होंने बिच प्रमाण दिता मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, ते बाबा फरीद कह लगे हकीकत है कि जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए। फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए, के किते जवानी प्यार तो बिना ना चली जाए, साई नू ने करन तो बिना ना व्यर्थ चली जाए। सच जानो उस महापुरुष दी कली जवानी ही नहीं, जोबन विच नहीं, वो ता अपने बचपन तो ही रब नू इश्क करन लग पए। बाबा फरीद साहब अजे बचपना है ते कुरान उना नू जबानी कंठ हो गई है, अजे बचपना है कि कितना कितना समा रब दी इबादत भी जुड़े रहिंदे ने। आखर वो कैसी परम अवस्था मिली कि जिदन जमीन ते पई कोई खाक मिट्टी अपने मुंह दे विच पाई ते उस मिट्टी विचों भी शक्कर वर्गा स्वाद आ गया। क्यों? अपना अंदर इन्ना कु मिठा हो चुका सी, आप मिठास दे भंडारे बन चुके सन, ते हकीकत एवे असी कहां कि मिट्टी मिट्टी हो गई, जमीन ते मिट्टी मिट्टी नहीं होई, असल विच बाबा जी दी रसना दी मिठास करके मिट्टी भी मिट्टी हो गई। उस महापुरुष वो आप शक्कर गंज है, शक्कर दे खजाने ने। उस महापुरुष ने क्या कहन लगे, जोबन चला जाए प्रीत तो बिना, जवानी चली जाए प्यार तो बिना, जिंदगी दा समा निकल जाए प्रीत तो बिना, ते ए अंदर नू दुख पासदा है। केवल जोबन नहीं अपने अंतले समय भी ओ महापुरुष रब दी इबादत भी जुड़िया है, खुदा दी इबादत भी जुड़िया है, ते जदो नमाज अदा पे करदे ने अचनचेत गशी पई है, बेहोश होके जमीन ते गिर गए, सजदा पूरी तरह कर ना सके। मुरीदा ने बाबा फरीद साहब जी नू संभालिया, संभालन तो बाद उन्होंने बाबा जी दू जदो तलियां पैरां दियां चशियां, उन्होंने खत पकड़ के खत पैर कुटे नपे ते उठ के बैठ गए, ते पहला प्रश्न सी उस महापुरुष ठीक है, कहन लगे नमाज अदा हो गई, मेरा नेम निभ गया, बंदगी वाला समा सही सफल हो गया। बैठे हुए मरीद ने क्या बाबा साहेब नमाज पूरी तौर ते अदा ना हो सकी, पूर्ण तौर ते आप इको दम जमीन ते डिग पे। कहन लगे लियाओ पानी, कराओ मेरा वजू, मैं परत के फिर खुदा दी याद भी जुड़ना चाहना, मैं नमाज अदा करनी चाहना वा। ते किसे ने उत्थे प्रश्न कर दिता सी कि बाबा साहेब सारी जिंदगी ता अल्लाह ताला दी विरद विच ओदे जिक्र विच ओदी याद विच बतीत होई, हुण जे नई नमाज हो रही शरीर खेचल विच है, तन नू थोड़ा बहुता खेद है, हुण अज तुसी ए रहन दियो विश्राम करो। उन्होंने उसे वेले पिछे मुड़ के कहा, कहन लगे तेनू की पता मेरा अंदर किथे खलोता होया है, तेनू केवल मेरी बार दी क्रिया दिसी है कि मैं इन्ने साल रब दी इबादत कीती, इन्ने साल मैं परमात्मा दा जिक्र कीता, पर तेनू की पता मैं अंदरों किथे टिकया वा। लियाओ पानी, लियाओ आव, ते मैं वजू करके परमात्मा दी याद भी जुड़ा, रब दी याद भी जुड़ा। ओ महापुरुष कह रहे ने कि वक्त चला जाए प्रीत तो बिना ते व्यर्थ है। बाबा नानक साहब कह रहे ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, प्यार तो बिना तू, प्रेम तो बिना तेरी बंद खलासी निखोनी। हुण प्रेम बद्धा चक्की कर्म नहीं, प्रेम ता एक अंदर दी खिच है, प्रेम ता आपां वारन वाली एक अंदर दी बिरती है। ते धन गुरु नानक साहब कृपालू ने अपनी अमृत बाणी विच ए उदाहरणा दित्तियां, उस अष्टपदी दी पहली एग्जाम्पल पहली उदाहरण ए वे मैं अर्ज कर रहा, नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिबलाई। कैसी भगती कीती, केवल ता केवल चौंकड़ा मार के नहीं,
अपने आप नूं पूर्ण तौर ते रब दे चरणां विच उन्हां ने फिदा कर दिता, उन्हां ने समर्पित कर दिता। बाबा नानक जी ने उस फिदा होण वालियां कुछ उदाहरणां नूं अपनी बाणी विच दर्ज कर दिता। पुछया, सच्चे पातशाह ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕੈਸੀ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟੁਕਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੇਵਲ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੌਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਘੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕੋਦਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾੜ, ਕਮਲ ਦੀ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀ, ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਜਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਤੇ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਇੱਕੋਦਮ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਮਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੱਬੇ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਬਲਾਈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਵੇ ਸ਼ਿਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਉਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਲਾਮੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਪਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਟਿਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਏ ਇਸ ਮੈਲੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਦੀ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਉੱਠਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਤਣੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਛੱਡ ਪਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਖੌਂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦੇਰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਖੌਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਦਾ, ਨਾ ਸੁਗੰਧੀ, ਨਾ ਰੂਪ ਤੇ ਨਾ ਭਵਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਪਾਣੀ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਠੋਕਰ ਵੀ ਸਹਾਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਮਨੁੱਖ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਮਲ ਦੀ ਥਰਾਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੂੰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਨੇ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਤੇ ਯਕ ਲਖਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਦੀ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਲੜ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਇਹਵੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ,
ਰੇ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜੀਐ, ਜੇ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਛਾੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੇ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musa, baby. Yeah.
2: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, नहीं खाऊंदा होवेगा हिंदू गऊ, पर पराया हक खा रहे तो गऊ भी खा रहे, नहीं खाऊंदा होवेगा मुसलमान सुवर, पर पराया हक खा रहे तो सुवर ही खा रहे। हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, एक देश दूजे देश का हक मार जाता है, बड़े वड़े वड़े देश जो छोटे देशों का हक खोल लेंदा है, सारी दुनिया च इस तरह चलता है, वड़ियां कौमां छोटी कौमां का हक खोल लेंदियां, वड़े मनुख छोटे मनुखां का हक खोल लेंदे, सुअर खांदे ने या गऊ खांदे ने और की है, अगर इस हिसाब नाल लोगे तो सुअर खांदे ने गऊ खांदे ने। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरु पीर हामा तां भरे जा मुरदार ना खाए, गुरु पीर हामी भर सकदा अगर मुरदार ना खावे, तो मुरदार की है, हिंदू लई गऊ खाना मुसलमान लई सुअर खाना प्राया हक मुरदार है, मुरदा है, ये तो मुरदा खाना है। औखे ना होना बवौर गहराई नाल देखोगे, वड़े वड़े देश छोटे देशां नूं खा रहे ने, मुर्दे खा रहे ने, वड़ियां वड़ियां कौमां छोटियां कौमां दा हक मार जांदियां, वड़े वड़े मनुख छोटे मनुखां दा हक मार जांदे ने। जद किसे दा हक मार लिया तो मुर्दार ही खादा और की खादा है, इसे नूं हराम कहंदे ने, ये भी महस करदे आ। और महाराज कहंदे ने बड़े ने इतनी वड्डी सियाणप है, खांदे भी हराम ने, अगले नूं कख भी नहीं पता चलता, खांदे भी मुरदार ने, अगले नूं कुछ भी नहीं पता चलता, इतनी दृष्टि ते है, अंधेरे च वेख सकदे ने, रोशनी च नहीं वेख सकदे। तो जो अंधेरे च वेख सकदा है रोशनी च नहीं वेख सकदा, गोगू है और कोई की है, गोगू है। संपत दौल झूल संग झोलत, माया मगन फेरत गोगना। सतगुरु ने उस प्रश्नकर्ता नु चुप करा दिता सी जिसने किया सी महाराज शब्द सारियां दे हिरदिया नु रोशनी नहीं देंदा, सूरज देंदा है, सूरज सारियां लई बार चानना कर देंदा है, गुरु दा शब्द सारियां दे हिरदे च प्रकाश नहीं करदा। फिर एक करोड़ा सूरजां वर्गा किस तरह होया, दो शब्द बर्दाश्त कर लेना, हाथ जोड़ के मैं माफी मंगा। घुग्गू थोड़े ने बहुत ज्यादा नहीं ने, पंछियां दे पशुआं दे ओ थोड़े जिया ने, जिन्हां नूं रात दी तारीकी दे ते दिखाई देंदा है, दिन दे चानने च नहीं दिखाई देंदा। मनुखी दुनिया च ये घुग्गू बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने, झूठ दे तेरा सौंदा है, सच दे कोई नहीं, गंदे गीतां दे तेरा सौंदा है, शब्द दे कोई नहीं,

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
2: प्रभु आपे नानक दास सदा गुण गावे। एक भोरी नदर निहाली है जियो माज महला पंजवा सफल सो बाणी जित नाम बखाणी गुर प्रसाद किन विरले जानी धन सो वेला जित हार गावत सुनना आए ते प्रवाना जियो से नेत्र प्रवान जिनी दर्शन पेखा से कर भले जिनी हार जस रेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हाओ बाल तिन संग पछाणा जियो सोन साजन मेरे मीत प्यारे साध संग खिन माहि उधारे किल बिख काट हुआ मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो दोए कर जोड़ एक बनाओ सगरीजा दोए कर जोड़ एक बिना करीजा कर कृपा डुबदा पत्थर लीजा नानक कौ प्रभ भय कृपाला प्रभ नानक मन भाणा जियो माज महला पंजवा अमृत बाणी हर हर तेरी सोन सुन होवै परम गात मेरी जालन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो सुख भया दुख दुख सुख भया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम वखाना जाल थल नीर भरे सार सुबर बिरथा हो कोय न जाए जियो दया धारी तेन सिरजन हारे जी जन सागले प्रत पारे मेहरबान कृपाल दयाला सागल त्रिपत आगाए जियो बाण त्रेण त्रि पावन की तोन हरिया करण हार खिन भीतर करिया गुरमुख नानक दिसा अराधे मन की आस पुजाए जियो माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधब तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबनी थाई ता पाओ के हा काढ़ा जियो तुमरी कृपा ते तुद बछाणा तू मेरी ओट तू है मेरा माणा तुझ बिन दूजा अबर न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो जी जंद सब तुद पाए जित जित भाणा तित तित लाए साब किश कीता तेरा होवै नाही किछ अछाड़ा जियो नाम त्याय महा सुख पाया हार गुण गाए मेरा मन सीत लाया गुरपुरै वजी वाधाई नानक जिता विखाड़ा जियो माज महला पंजवा जी प्राण प्रभ मन है अधारा भगत जीव है गुण गाय अपारा गुण निधान अमृत हर नाम हार त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा धार जो करते आवै सार संग जन्म मरण मिटावै आस मनोरथ पूर्ण होवै भेटत गुर दरसाया जियो अगम अगोचर के छमित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी खुदी मिट्टी चूका भो लावा गुर मान ही मैं प्रगटाया जियो वणद मंगल कल्याण निधाना सुख सहज हर नाम बखाना होए कृपाल स्वामी अपना नाओ नानक कर्म है आया जियो माज महला पंजवा सोन सोन जीवा सोए तुम्हारी तू प्रीतम ठाकुर यात भारी तुमरे करतब तुब ही जन हो तुमरी ओट गोपाला जियो गुण गावत मन हरिया होवै कथा सुनत मन सगली खोवै भेटत संग सार संतन कै सदा जपाओ दयाला जियो प्रभे अपना सास सास माराओ ए हमत गुर प्रसाद मन धाराओ तुमरी कृपा ते होए प्रगासा सर्व माया प्रतपाला जियो सत सत सत प्रभ सोई सदा सदा सद आपे होई चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे देख नानक भय निहाला जियो माज महला पंजवा हुक्मी वरसन लागे मेहा साजन संद मिल नाम जपेहा शीतल सांद सहज सुख पाया ठाड पाई प्रभ आपे जियो साब केछ बहुत बहुत उपाया कर कृपा प्रभ सगल रजाया दात करो मेरे दातारा जी जंद प्रभ जी जंद साब त्रापे जियो सच्चा साहिब सच्ची नाई गुर प्रसाद ते ससरा त्याई जनम मरण भय काटे मोहा बिनसे सोग संतापे जियो सास सास नानक सा लाहे सिमरत नाम काटे सब फाहे पूर्ण आस करी खिन भीतर।